0: You deserve better.
1: न मधेसी न हिमाली न पहाड़ न हिंदू न मुस्लिम न बुद्धिस्ट न ईसाई न समर्थक कुनै राजनीतिक विचार को न त विरोधी।

0: सुन्दै हुनुहुन्छ टाइम्स एफएम 90.6, यो हो जस्ट म्युजिक, नॉन स्टॉप म्युजिकल ब्रेक, जस्ट म्युजिक।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी का सीधा प्रसारण है।
2: एक अभागन की विपता दुख भरी सुन रहे हैं आप कल्पना की आवाज में।
1: सुर बिखेरा है शब्बीर अहमद,
2: निर्देशक है बॉस्को लेस्ली मार्टिस, बीबीपीएलएम।

0: Times FM 90.6
1: यो हो संगीत लहर सदाबहार हिंदी गीत संगीत को नॉनस्टॉप म्यूजिकल ब्रेक संगीत लहर।

0: बुलाना बुलाना।
1: चल सीमा तू ही बुला।
0: अरे हाँ बुलाना बुलाना, फिर जरूर सुनेगा।
1: चल बुला, चल बुला।
2: ना बाबा ना, लो मैंने ही बुला।
1: हाँ तेरी तो जरूर सुनेगा।
2: अरे
1: बुलाना।
2: अच्छा बाबा बुलाती हूँ, काम तो मत खाओ।
1: हाफिज़।

या पीर बाबा, अब तुम्हारा ही आसरा है। मेरी पोती को अच्छा कर दो, कईयों की मुरादें पूरी की हैं तुमने, हमारी भी झोली भर दो।